साल की उम्र में बच्चा सरकशी, बगावत और नाफरमानी के जरासीम कैच करता है, जिसकी पहली अलामत यह है कि वो दीन की पाबंदी से गुरेज करता है, दूर भागने लगता है। लिहाजा इस उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चों को पहले समझाओ, दावत दो, हुक्म दो, और अगर वो बात न सुने, नमाज न पढ़े, तो उनको हल्की सज़ा भी दो, ताकि वो शुरू ही से उनके जहन में ये बात बैठ जाए कि जो बाप आज तक मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही करता था और आज वो मुझे डांट रहा है। और इससे दूसरी बात, बच्चों को ये भी एहसास होगा कि अहकाम दीन की पाबंदी करना उनके लिए नहायत ज़रूरी होगा, क्योंकि बच्चे को नमाज का आदी बना देना ही दर हकीकत दीन के अक्सर अहकामात पर अमल का ज़रिया बनता है कि जब बच्चा नमाज पढ़ेगा तो उसे पाक और साफ रहने के तरीक़ों पर अमल करना होगा। वुज़ू और गुस्ल के तरीक़ों की तालीम भी उसे दी जाएगी, क़ुरान पाक पढ़ना उसे सिखाया जाएगा। जब वो नमाज के लिए मस्जिद शरीफ जाएगा तो लोगों से बातचीत करने, मिलने जुलने का ढंग और सलीका भी उसे आएगा, और उसे सारी ज़िंदगी इस बात का एहसास रहेगा कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान का जो कदम है वो नाइट क्लबों की तरफ नहीं बल्कि मस्जिद की तरफ बढ़ना चाहिए। अलगरज मुअज़्ज़ज़ सामईन, नमाज दीन का बुनियादी और अहम रुकन है, जिसकी पाबंदी दीन के बहुत सारे अहकामात की पाबंदी और तालीम का ज़रिया बन जाती है। इसीलिए नमाज की पाबंदी कराने की गरज से अगर बच्चे को कुछ सज़ा भी देनी पड़े तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर एक बहुत ही प्यारी बात इरशाद फरमाई है। आप फरमाते हैं, बच्चे के लिए माँ बाप की जो सज़ा होती है वो ऐसे है जैसे ज़मीन के लिए, खेती के लिए आसमान की बारिश है। जिस तरह बारिश से मुरझाया हुआ खेत सरसब्ज और शादाब हो जाता है, इसी तरह बच्चों को माँ बाप की तरफ से जो सज़ा दी जाती है उससे उनकी ज़िंदगी जो है वो सरसब्ज और शादाब हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, माँ बाप की ज़िम्मेदारियों का आगाज़ यहाँ से होता है कि वो औलाद को नमाज का पाबंद बनाएं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये ज़िम्मेदारी वही बाप और माँ पूरा कर सकते हैं जो ख़ुद नमाज के पाबंद हों या जिनके दीन में दुनिया से ज़्यादा कब्र की और आखरत की अहमियत हो। आजकल जब किसी से ये कहा जाता है कि आपके बच्चे नमाज पढ़ने नहीं आए या दीन के किसी प्रोग्राम में नहीं आए या क़ुरान पाक की तालीम हासिल करने नहीं आए, तो जवाब मिलता है कि बच्चों को स्कूल का काम बहुत ज़्यादा होता है, गोया बाप ही के ज़हन में नमाज से ज़्यादा स्कूल की अहमियत है। तो ऐसे माँ बाप दर हकीकत अपनी औलाद से दीन से दूरी का सबब बनते हैं अपनी औलाद के लिए, और ऐसे माँ बाप कभी भी औलाद से सुख नहीं पा सकते। औलाद से चैन और सुख वही लोग हासिल करते हैं जो उन्हें इस्लामी तालीम, इस्लामी तहज़ीब से आशना करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद-ए-गिरामी है, आकाए दो जान